0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 11 a.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zara yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वीआर टेली हेल्थ. पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: लाइक अस ऑन facebook.com /FM 24/7 365.
4: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: This program is brought to you by
3: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विस इसकी फराहमी के लिए पूर अज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365. FM 247365.

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by HPL Sari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

Hyderabad, Rahimyar Khan, Multan, Avatabad.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaise guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To jee hongi aap se khoob sari baatein share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. आज म्यूजिक के साथ साथ एक अलग सवाल भी है आज हमारे पास जो हम आपसे पूछेंगे लेकिन क्या सवाल है क्या बात है या क्या क्या होगा आज प्रोग्राम में तो ये सब हम आपको बताएंगे तब जब हो जाएगा प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज क्योंकि बकायदगी से आगाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं होता क्योंकि वो होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ सो लेट्स बिगिन

Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो सबसे पहले आपको बताएंगे तरीका कार के कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो जी इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि स्टेटस हो चुका है अपडेट. तो भाई आज का इंटरेस्टिंग सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर कल से आपका फोन एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा किस चीज की याद आएगी. यानी कि अगर आपको पता चले कि जी हाँ कल से लेकर पूरे एक हफ्ते तक आपका जो फोन है वो बंद हो जाएगा तो मुझे तो लग रहा है कि जीना ही दुश्वार हो जाएगा. लेकिन फिर भी अगर बंद हो जाए तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करेंगे. वो यूट्यूब होगा, वो सोशल मीडिया एप्स होंगी, वो किसी का नंबर है, किसी से कॉल पे बात करनी है, व्हाट्सएप है. तो सबसे ज्यादा आप किस चीज को मिस करेंगे अगर आपका फोन जो है वो एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो हमें जरूर बताएं. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि भाई एक हफ्ता जो है वो बहुत ज्यादा तवील टाइम है और एक हफ्ता मोबाइल के बगैर रहना सोचकर भी लोग जो है वो सोच रहे होंगे अल्लाह अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा. तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा हमें जरूर बताएं आप लोग. आपकी जबानी हम जानेंगे आप लोगों से कि अगर ऐसा ये सितम आपके साथ हो जाए तो आप किस चीज को सबसे ज्यादा करेंगे याद. जब तक आप हमें बता रहे हैं हम आपको देंगे सोचने का मौका और सोचने का मौका हम आपको ऐसे नहीं देंगे, मतलब आपको एक अदर ट्रैक भी सुनाएंगे कि आप उसे भी इंजॉय करें और सोचें और हमें बताएं कि किस चीज को करेंगे आप सबसे ज्यादा याद.

0: It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकनीक
4: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: facebook.com/fm247365
5: fm247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one, fm 100.
0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain program Lunch Time Special with me. 12 se 2 ke darmiyan hota hai mera aur aapka saath Monday till Saturday. और ये साथ हमारा कानमो दायम है जहां पर हम आपसे खूब सारी बातें भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे. ताज़ तरीन सूरत हाल क्या चल रही है इस पर भी बात हो रही है. गर्मी बहुत हो रही है कराची में इस पर भी बात चल रही है. और इसके साथ साथ हम आपको ये भी कह रहे हैं कि जी गुस्सा भी कम करें, सब्र भी करें, अल्लाह से दुआ भी करें कि अच्छा मौसम आ जाए. तो बिल्कुल जी इसी तरह बातों का सिलसिला जारी है. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम दाखिल हो चुके हैं और एक अदर ट्रैक हम आपको डेडिकेट करते हैं. और डेडिकेट करते वक्त मैं आ जाती हूं एक अदर टेंशन में कि कौन सा ट्रैक आपको डेडिकेट करें. तो चलें जी आपको करते हैं पसूरी डेडिकेट, क्योंकि पसूरी जो है वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है अपने यूट्यूब पे. सो इसकी सेलिब्रेशन तो बनती है. और कुछ दिनों पहले भी हमने इसको जो है वो शामिल तो किया था. और ये ऐसा ट्रैक है जिसे हम हमेशा शामिल करते हैं. बट द गुड थिंग एंड गुड फैक्ट इज दैट पसूरी के 1 बिलियन हो चुके हैं. सो दैट्स रियली ग्रेट. सो दैट इज वाई वी आर एडिंग दिस ट्रैक अगेन इन आवर शो. और ये हम आप सबको कर रहे हैं डेडिकेट. सो एंजॉय.

Yes everyone, तो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने कर दिया है आपको डेडिकेट. And now we are moving forwards towards an important बात. और वो important बात ये है, important बात ये है कि ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि आपके लंच में क्या है, तो क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, हमें जरूर बताएं. तो भाई लुकपल ने हमें कुछ देर पहले मैसेज किया था, तो कहती हैं 12 बजे से लाइट गई हुई है, मूड खराब हो गया है, आपने सॉन्ग सुना के अच्छा कर दिया, मूड मेरा ग्रेट हो गया भाई. कहती हैं और आज लंच में मूंग की दाल बना रही हूं, गर्मी बहुत है. गर्मी तो यार मतलब अजाब ही हो गया जिंदगी का, इतनी ज्यादा गर्मी है कि बस मतलब लिटरली रोना आ जाता है. और ये बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगानी हो जाती है कि जब लाइट नहीं होती ना, और गर्मी ऊपर से अल्लाह तौबा, कराची की गर्मी इस वक्त बड़ी टॉर्चरिस्ट है और इतना टॉर्चरिंग कर रही है ना वो हमें, मैं क्या क्या कहूँ, टॉर्चर भी कर रही है टॉर्चरिस्ट भी है. तो इतनी मुश्किलात का सख्त हम लोग शिकार है ना गर्मी के साथ, और दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस इशू. लेकिन खैर लुकपल ने उसके बाद हमें दूसरी खबर भी सुना दी कि शुक्र है हमारी लाइट आ गई है, आज लंच में मूंग की दाल है, बेहतरीन तरीन हो गया भाई. इंजॉय करो आप अपना लंच, इंजॉय अलॉट. और इसी के साथ साथ जो है वो हम और लोगों से भी उनका लंच जो है वो जानेंगे कि उनके लंच में क्या है क्या नहीं है. और जरूर हमें बताइएगा कि आप लोग जो है वो अपने लंच

अच्छा क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दिस. लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि लंच में ना आप वो बनाइएगा, इस तरह की चीजें बनाएं जो कि बहुत ज्यादा हैवी ना हो, क्योंकि गर्मी को बनिस्बत सोच के, यानी कि पाए, निहारियां और ये इस तरह टाइप की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा प्लीज, तो ये आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा. लेकिन अच्छा मजे का लंच बनाएं, जैसे सब्जी खाएं, दाल चावल खाएं, थोड़ी लाइट लाइट गजा रखें. अभी कराची का मौसम फिर अच्छा हो जाएगा तो फिर बनाइएगा जी पाए निहारी और इस तरह की चीजें. लेकिन फिलहाल थोड़ी सी एहतियात कर लें जी. रशीद खान के बस की ट्रैक की जानब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद. लंच में क्या है जरूर बताइएगा.

ऑल राइट एवरीबॉडी, सो आई एम बैक. मैं वापस आ चुकी हूं और जब वापस आ ही चुके हैं तो आपको क्यों ना एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के हवाले से मालूमात फराहम करते हैं. कारोबार को दें स्मार्ट बैंकिंग की आजादी एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ, मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक और जदीद ऑनलाइन बैंकिंग, ताकि आप ज्यादा तवज्जो दें अपने बिजनेस पर. बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बैंकिंग होनी चाहिए आसान. एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपनी रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाएं मजीद सहल और तेज. हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी. आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदे उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलियात का. कारोबारी अदायगी हो या रोजमर्रा ट्रांजेक्शन, एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम अब होगा ज्यादा आसान, ज्यादा स्मार्ट. अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर अप. पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सिर्फ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में. कामयाब कारोबार की पहचान है स्मार्ट फैसले. आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट अपनाएं और बैंकिंग की झंझट को करें अलविदा. बिजनेस चलाएं एतमाद के साथ, क्योंकि एचबीएल फ्रीडम अकाउंट देता है आपको वो सहूलियात जो हर कारोबार को हैं दरकार. तो जी हाँ, क्या आप भी खुलवा रहे हैं अपना एचबीएल फ्रीडम अकाउंट? तो मुझे लगता है कि जी देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से आप ये अकाउंट खुलवा लें ताकि इतनी सारी सहूलियात के फायदे आप भी उठा लें.

0: Across the nation, there is only 100 FM.
1: Radio.

Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So guys, today is Wednesday and 23rd of September 2026. Aaj sunne wala show jiska naam hai Genie in a Radio. So it's a request based show. You can request for your favorite tracks. Tareekekar bahut hi aasan hai. Just type KHR, then leave space, aapka message, aapka naam, आपकी रिक्वेस्ट, और इसे तीन छापर भेजना है. सिंपल एज दैट. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा और मैसेजेस करते रहिए 3636 पर.

0: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneek
2: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
7: facebook.com/fm247365 FM 247365.
8: Across the nation, there is only 100 FM.
9: Genie in radio.

in radio. Radio. Genie in radio.

0: station.
1: मंजिल अभी बाकी है और सफर रवा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया। शाहराह भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से जायद सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ्त, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली। तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल जराए को फरोख दे रहे हैं। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश कयादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है। हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निजाम कायम किया। SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया। पाकिस्तान की पहली EV बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही हैं। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सखर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी। खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है। ज़रई खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया। बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, ज़रई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है। पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ ज़रई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ मंसूबों, आदाद और शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
3: उमरा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
4: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे ना बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
5: वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, EV बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनामात जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकनीक
6: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
7: facebook.com/fm247365
8: fm247365
9: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. And आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. देखिए कार बहुत ही आसान है. Just type KHI then leave space. आपका message, आपका नाम, आपकी request और उसे 3636 पर भेजना है. Make sure जब आप हमें message करेंगे तो आपने अपना नाम जरूर लिखना है. That is really important. So please keep that in your mind and हमारे पास पेज पे काफी सारे messages जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं and मैं शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास सबसे पहले समी शेख का message आया है और उन्होंने कहा है मुझे वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. और ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है. ठीक है, मैं आपका सॉन्ग देख लेती हूँ. कह रहे हैं अगर ये जी सॉन्ग आओ जी ये सॉन्ग ना हो दिशान रोकरी का तो फिर आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. ठीक हो गया है. एंड मुझे टेक्स्ट मैसेज ज्यादा पसंद है. ठीक है, सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट आप लोगों को वॉइस नोट ज्यादा पसंद है या टेक्स्टिंग. लेट अस नो ऑन 3636. निम्रा ने हमें मैसेज किया है. निम्रा थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड निम्रा इज सेइंग वॉइस नोट. अच्छा यार, वॉइस नोट और टेक्स्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो बात ये होती है कि बहुत से लोग जो हैं वो नहीं पसंद करते कि वो कोई चीज जो है टाइप करें. सही है, तो होता ये है कि जाहिर है अब वॉइस नोट में ही होता है कि आप अगर किसी ऐसी जगह बैठे हुए जहां वॉइस नोट नहीं सुन सकते, ठीक है, शोर भी ज्यादा है या शोर नहीं, शोर है तो उसमें आवाज सही नहीं आ रही होती, और अगर शोर नहीं है बिल्कुल खामोशी है तो भी वॉइस नोट नहीं सुन सकते हैं. यू नो, आप जाहिर है एक अगर आपकी कोई बात चल रही है तो आप नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई सुने, ठीक है. तो इस हवाले से जो है वो टेक्स्ट मैसेज अच्छे होते हैं, लेकिन जो लंबी बात होती है उसके लिए बंदा जो है टेक्स्ट मैसेज करे तो फिर थक जाता है. जाहिर है इतना लंबा कौन मैसेज टाइप करे, तो यूजली फिर लोग जो है वो वॉइस नोट प्रेफर करते हैं. सो आप लोग हमें मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट डू यू गाइस लाइक टू हैव, वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज. सो इट्स 41 मिनट्स पास टू ऑन द डायल राइट नाउ. निम्रा थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. उन्होंने कहा है आतिफ असलम का कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. ठीक हो गया है. सो जनाब आप लोग 3636 पर भी हमें मैसेजेस कर रहे हैं एंड facebook.com/rj.jasmin यहां पे भी कर रहे हैं. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी अलीना की. वालेकुम अस्सलाम अलीना. अलीना मैंने आपका मैसेज बिल्कुल शामिल कर लिया है. ओके, दर निजात का जो ओएसटी है वो रिक्वेस्ट किया है इन्होंने. ठीक हो गया है, अभी आपके लिए प्ले कर देते हैं. दिस सॉन्ग इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: Smooth music. Smooth music. Non-stop. Non-stop.
1: 24 hours. 24
2: hours. FM 100. इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे ना बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकनीक
5: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111178 37
6: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
7: FM247365 Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine. Genie in a radio.

Alrighty, everyone, welcome back. Aap sun rahe from 100 Pakistan. And, log messages kehna hai 3636 per and facebook.com/rjjasmine. JZMINE. Us pe bhi aap hume messages kehna hai. So it's 48 minutes past you on the dial right now. 4 baje tak aap log ke saath hum maujood hain. Nigat has texted in and, walaikum assalam, Nigat, thik thak, Allah ka shukar. Aap bataye aap kaisi hain? कहती है मुझे वॉइस नोट से चढ़ है. अच्छा क्यों निगत, किस वजह से बता सकती हैं आप हमें मैसेज करके, किस वजह से आपको वॉइस नोट से चढ़ है? ओके, आयशा हैज टेक्स्टेड इन, वालेकुम अस्सलाम, फतूर का ओएसटी ने रिक्वेस्ट किया है. अच्छा जी, ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, हमारे पास समी शेख का मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि अगर वो सॉन्ग नहीं तो अपनी पसंद का कोई सॉन्ग चला दीजिएगा. तो मैं आपके लिए सॉन्ग प्ले कर रही हूँ. दिस इज अ ट्रैक कॉल्ड दिल बेचारा और दिस ट्रैक इज फॉर यू समी. ठीक है,

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to F100 and Applicant Messages get a hand 3664. And facebook.com/rjjasmine. इस पे भी आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं और आप ही रहे हैं, बस काफी सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
2: शॉक ऑफ फैनम कराची की तकलीफ
3: and step school se foundation ho strong call now at 0311117837
0: like us on facebook.com/fm247365 fm247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Radio.

Hello everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and it's 27 minutes past 3 on the dial right now. So, bilkul aap log hame messages kare 3636 par show ka time jo hai wo thoda sa hi reh gaya hai. Aadha ghanta almost reh gaya hai. To jaldi jaldi request kar sakte hain for your favorite track. Fir ke kar aasan hai, type kijiye chahe space aapka message aapka naam aapki request 3636 par bhejna hai and facebook.com/orjit.jasmine jzmine is pe bhi jaake aap apna feedback hame de sakte hain aur inbox pe message kar sakte hain. Hira ne message kiya hai hame. Walaikum assalam Hira, bilkul theek thaak, aap bataiye aap kaise hain. Okay, Ghoom Charakhra, इन्होंने request किया है, ठीक हो गया, आपके लिए play कर देंगे. Thank you so much for your message, Hera. Okay, so colors के हवाले से बात हो रही थी, तो कुछ colors अभी हमारे पास रह गए हैं, जिनका मैंने आपको बताना था. Okay, so abhi thodi der pehle maine aapko black color ke hawale se bataya tha. Now we are moving on towards the color of white, yani safed rang. Black and white is a combination, to hum white color ko kaise bhul sakte hain. So basically what white color defines, it defines simplicity and freshness. All right, and white is basically the color of cleanliness and पीस. और जिन लोगों को व्हाइट कलर पसंद होता है तो उनका भी जो बेसिकली माइंड सेट होता है, इट्स अबाउट के उन्हें ज्यादा शोर नहीं पसंद होता, वो पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद करते हैं. और जो लोग बहुत एस्थेटिक होते हैं और उन्हें इस तरह की चीजें पसंद होती है ना, व्हाइट कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, मिनिमल लोगों को अट्रैक्ट करता है कलर बहुत ज्यादा. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द नेचर, जो व्हाइट कलर पसंद करते हैं बहुत सिंपल होते हैं और मतलब कहा जा सकता है कि उन लोगों में बनावट नहीं होती है, ठीक है, फेक नहीं होते हैं वो. Or they are very loyal and they are very simple. Okay, now we can talk about pink color. बहुत से लोगों को pink color पसंद होता है, especially लड़कियों को. So basically, what pink color defines? It defines softness. And pink, जो basically color है, वो बड़ा एक तो bright सा color है, loving color है. So usually it defines softness and affection. और अगर different shade of pink की बात करें तो वो भी इसी तरीके से define करता है. Pink color जो पसंद करते हैं वो लोग jolly होते हैं. Alright, इसी के साथ साथ जाएंगे एक छोटी सी break की तरफ. हमारे साथ रहिएगा, message करते रहिए 3636 पर.

0: Smooth music. Smooth music. Non-stop. Non-stop.
1: 24 hours.
2: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-550-55 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.ncciia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ़ुज़ है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: facebook.com/fm247365
8: Genie in radio.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है।

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
6: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
6: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
1: This program is brought to you by
8: Sir Sabs Nitro Falls ko laga aur jeet ta ja
1: and
9: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
10: VR telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
11: Tabal family mixture laye umrah par jaye
1: and
3: HBL freedom account jahan khwab वहाँ HBL
1: and
12: Dabur Red Toothpaste 7 dental problems का एक solution
1: and
13: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally.
14: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
15: FM 247365

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
0: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
7: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
8: मजीद मालूम के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं.
9: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका. साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837.
11: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
12: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए. तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
14: सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
8: एंड VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
16: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
17: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन.
16: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
18: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99% 100 FM
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सब मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: सरसब्ज़ नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
9: एंड दिया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
10: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
11: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
12: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
14: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा।
15: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
16: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाईया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
13: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
17: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
13: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
18: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
19: FM 24/7/365

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: This program is brought to you by
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
8: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
9: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
10: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
2: HBL freedom account jahan khwab वहाँ HBL
0: एंड
11: डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
0: एंड
12: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
13: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
14: FM 247365

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم اللہ خان. Across the nation.
4: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
5: 11.9%، 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99%।
7: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे ना बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम कराची की तकदीर।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: तपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111872725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
15: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
16: सब मुड़ के देख रहे हैं।
17: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
18: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
18: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
18: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
17: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
19: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
20: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
21: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
6: This program is brought to you by
22: Sir Sabs Nitro Foss ko laga aur jeet ta ja
6: and
23: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
6: and
24: VR telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
6: and
25: Tabal family mixture laye umrah par jaye
6: and
9: HBL freedom account jahan khwab वहाँ HBL
6: एंड
26: डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
6: एंड
21: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
27: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
28: FM 247365.
29: FM 100
7: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
30: 11.9%
31: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
32: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
30: 11.99%।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
16: सब मुड़ के देख रहे हैं।
17: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
18: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
17: एग्जैक्टली, Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-सीटर, 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
18: अच्छी है, पर मुझे तो 8 seater चाहिए थी।
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
18: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
17: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
30: 100 FM।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
30: 100 FM।
33: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
30: 100 FM।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
8: एंड
10: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
8: एंड
9: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
11: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
12: 100 FM
13: हाय फ्रेंड्स आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स लाइव्स एंड आवर फैमिलीज The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
14: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
27: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
15: FM 247365.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja and Phoenix laga aur bhul ja
1: Phoenix laga aur bhul ja
0: and
1: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
2: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and HBL freedom account jahan khab wahan HBL
3: and Dabur Red Toothpaste 7 dental problems ka ek solution
0: and
4: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally
5: in chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
6: 11.99%
7: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99%।
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
13: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
15: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
16: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: This program is brought to you by
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
17: FM 247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
18: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
19: Evening drive time with DJ Kassam.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाए।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
5: Facebook.com/FM247365 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan.

Well, exactly. Coming in with JD, that is Jess and Drew.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
6: FM 247 365 FM 100।
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 100 100

0: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो।

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Karibi HPL branch chalo ya apply karo online.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए. FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: This program was brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
2: HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
3: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक.
4: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ. डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते. डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन.
5: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: स्वागत खानम कराची की तकलीफ.
7: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है. वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
10: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
11: हमारी जिम्मेदारी है.
12: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
13: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi ki Takleef.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: उम्र जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्र और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
1: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
2: Us on facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
6: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखी से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विस इसकी फरहमी के लिए पुर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247
7: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM 100.
9: Come on.
10: That's a Danny and a little, and then two can get.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki Takleef.
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
1: facebook.com/fm247365
3: FM 247365

0: This program is brought to you by Shaukat Khanam, Karachi ki Takleef.
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेक इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजे मकसद और

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली पूछों तक उतर आते हैं, हमें अपनी मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशहूर चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा।

All right. Assalamu alaikum, Pakistan. Assalamu alaikum, mere behno bhaiyo, dosto aur sajjano. This is your good friend Muhammad Ali Sheikh speaking to you directly from Ever 100 Studios Network. As I said, this network is a network means not only Pakistan, but outside Pakistan, in fact, around the globe on the internet. Ashfaq Ahmed Bhutto Saab, you're watching me. Thank you very much. This program is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. I desire to be satirical, humorous, and funny. Think of me as a little living, breathing cartoon. None of the words spoken in the show are to be taken too seriously to be true, and you must verify things heard in the show from an existing respectable source to be true. Writers and conductors show played in sanity as such, but cannot be held responsible. If some words are just too spicy or hurting to you, you may not listen to the show. If your sentiments are hurting, or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance, parental guidance are strongly advised. So without much ado, hum karte hain show ko shuru. Iske saath hai Ashfaq Ahmed Bhutto Saab. Kehte hain salam sir, kaise hain aap? Aap kaise hain sir Bhutto Saab? Aaj ke jo hamare sound engineer hain, वो सुपर शो को पूरा सुपरवाइज भी करते हैं गुफरान, एंड गुफरान ने भी ये जबरदस्त लिस्ट हमारे लिए बनाई है. मैं आपके सामने ये के बाद दीगर वो गाने पेश करूंगा, अपने गाने भी. आज स्पेशली मेरे जो पुराने गाने हैं, जो आज उस वक्त क्या होता था कि टेलीविजन में एक ही दफा चलता था वो गाना, और उसके बाद वो नहीं चलता था. तो वो गाने भी हैं जो बहुत पसंद किए गए हैं और हमें भी पसंद आते गाने, क्योंकि गाने तो मेरा काम था गाना, और उसके पीछे प्रोड्यूसर होता था, उसके पीछे राइटर, फिर उसके पीछे कंपोजर, फिर म्यूजिशियंस, फिर रिकॉर्डिस्ट, और फिर रिकॉर्डिंग होती थी, उसके बाद उसकी शूटिंग होती थी. कैमरा चलते थे टेलीविजन के पास दुनिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगे कैमरे हैं. सुना यह भी है कि कैमरा एक रोबोटिक कैमरा है जो तकरीबन 6 करोड़ का है. खैर, एक फिल्मी गाने की मुझे फरमाइश की गई है, और कि गुफरान साहब ने उसको पहले लिस्ट पे पहले नंबर पर रखा है, वो आपके सामने पेश करता हूं, पेश करने की जिसारत करता हूं.

मैं कहूंगा खातून ने मोहतरमा ने बहुत ही अच्छा गाया है, सुर में गाया है, तलफ्फुज भी बहुत अच्छे हैं और मिठास से आवाज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रिजवाना खान जी कहते हैं हाय हेलो आवर हाउ आर यू, आई एम गुड रिजवाना, दिस बीन वेरी वेरी लॉन्ग। बच एजाज हुसैन फिर कहते हैं सदाबहार सन, सदाबहार सन मतलब मैं आपका बेटा हूँ। खैर जो मर्जी आपकी बोले, आगे चलते हैं आपकी एक और सॉन्ग है हमारी। मैं चाहता हूँ पहले अपने गानों से निमट लूँ उसके बाद आगे जाएंगे। अच्छा अच्छा एजाज हुसैन के लिए सन नहीं सॉन्ग मोहम्मद आमिर लिखते हैं बाय ऑल टाइम फेवरेट मोहम्मद अली शेहकी साहब, कैसे हैं आप? यू सैंग सो मैनी मेमोरेबल सॉन्ग्स। हम रात बहुत रोए बहुत आग फुगान की जी, होंठों पे मेरे तेरा अफसाना, फिर शमा जले और क्या, शमा जले जले जले जले शमा जले आया परवाना एंड सी मोर बापरे एंड लिस्ट अब गोज ऑन ऑन। वो एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ तो चूंकि मैं रिकॉर्ड कीपिंग बहुत करता हूँ, 1500 सॉन्ग्स मैंने गाए हैं हर किस्म के, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी है, जिसमें फिल्म के गाने भी हैं, जिसमें स्टेज थिएटर के भी गाने हैं, टेलीविजन के बहुत सारे हैं, फिल्म के बहुत गाने हैं। अलग होता यह कि फिल्म का मसला ये होता है कि अगर फिल्म नहीं लगी तो गाना भी नहीं आया है ना। ज्यादातर यही होता कि फिल्म शुरू तो बड़े जोर शोर से होती हैं मगर दे सून फिजल आउट, पैसे खत्म हो जाते हैं। खैर आगे एक और सॉन्ग है। हाँ एक्चुअली एक ये मैशअप कहते हैं इसको, मैशअप का मतलब है मेरे सॉन्ग की थोड़ी थोड़ी झलकियां हैं, मतलब ऑडियो में झलकियों क्या बोलेंगे, कटलेट्स आई थिंक मेडले कहते हैं इसको, मेमन जेमोनाई। यार ये तो बड़ा अजीब नाम है, मैमन जेमूनी इज वॉचिंग मी। ओ बाप रे, कि मुझे डरना चाहिए क्या करना चाहिए? अरे डरना क्या यार। मैमन जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। एंड एक आरजे भी हमें वॉच कर रहे हैं, आरजे वली खान है, प्ले टू बैक रॉन्ग पता नहीं क्या लिखा। आरजे वली खान सलाम भाई, वालेकुम सलाम आरजे साहब। चले हम गाने को चलाते हैं।

0: us on facebook.com/FM247365. FM 200. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
1: ये लो जी, ये मैं फिल्म राज का ही सॉन्ग है जो मैंने बाबुल बोस की म्यूजिक में गाया है, और ये इंडिया में भी रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ भी रिकॉर्ड हुआ है। बड़ी लंबी स्टोरी है। अलका याग्निक भी गाया मेरे साथ, रजत इकबाल ने भी गाया, मैंने भी गाया। बड़ी लंबी कहानी है।

तेरे दीवाना तेरे एक नजर में, बना परवाना तेरे एक नजर में, ये पूरा गाना सुनाए। माय फेवरेट सॉन्ग ये कहते हैं मोहम्मद अली गौहर। बिल्कुल जी, आज के बाद आरजे वाली खान कह रहे हैं आई मिस यू, आई मिस यू टू। एन एजाज हुसैन कहते हैं जब तक जहाँ है चाहेंगे तुमको हम, ब्रेक कर दिया भाई। आप गाना सो रहे थे क्या? इतना मुश्किल गाना मैंने गा के खत्म किया और एक्टिंग भी की।

All right, my good friends, welcome back from the break. Just like aap, मैंने तो अपने गाने सुना लिए और भी मेरे पास बेतहाशा सॉन्ग है मगर मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे गाने सुन सुन के बोर हो जाएं इसलिए कम कम कम सुनाता हूँ और चुन के सुनाता हूँ अच्छे गाने

This is a Buff a Daddy. Yeah, I'll be missing you.

हैं इश्क हुआ जारी, इश्क हुआ जो तारी, मोमिना मुस्तैसिन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सिंगर्स।

अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा लेटेस्ट एक सॉन्ग है जो मैंने किया है इन टुडेज म्यूजिक, इन न्यू ट्रेंड्स ऑफ म्यूजिक मैंने किया है, इसीलिए मैं ऑनलाइन आकर इसको गाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई खौफ नहीं कि मुझसे फेसबुक मुझे बैन कर देगा या यूट्यूब मुझे कुछ कर देगा। ये मेरा अपना सॉन्ग है, मैंने खुद पैसे खर्च लिखवाया है, रानिया राय ने लिखा है और इमरान साजन ने सारी म्यूजिकल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं।

सामने मैं ये सॉन्ग प्ले करता हूँ। जिनको कभी न जीत सकता था वो भी लम्हे जी गया हूँ। मतलब जिंदगी में ऐसे भी हालात हुए कि अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि यार ये कैसे गुजर गए, ये मैंने किस तरह बर्दाश्त कर लिया। हाउ डिड आई रेजिस्ट, हाउ डिड आई ऑब्जॉर्ब, बस अब मैंने कर दिया। वो मैंने रानिया राय से

अच्छा एक बात आपको मैं बताना भूल गया, ये सारे जो म्यूजिक मैं जा रहा हूँ और गा रहा हूँ जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, उनको मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मुल्तान से मोहम्मद सईद, ये मुझे हर रात को गाने ढूंढ ढूंढ कर ये मुझे सारे गाने भेज रहे हैं जो कि मेरे पास हो ही नहीं सकते थे, जितने मेरे पास थे वो सब हार्ड डिस्क क्रैश हुए तो उसमें सब जाय हो गए, मगर एक बड़ी बात है कि मोहम्मद सईद ने ये सॉन्ग सारे बचा के रखे हुए और बड़े अच्छे शेप में बचाए हुए और मुझे भेज रहा है, मुझे मेरा दोस्त है और मैं प्ले करता हूँ, क्रेडिट गोज टू मोहम्मद सईद।

0: नहीं चल रहा है।
1: नहीं चल रहा।
0: चलें इसको मैं ठीक करता हूं, बिकॉज ये प्ले नहीं कर रहा है। इसको मैं ओरिजिनल ट्रैक ढूंढ के चलाता हूं, और एंड फॉर द मोमेंट

0: Oops.
1: The Final Countdown by Band Europe.

समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। आई गॉट इट व्हाट यू सेइंग, द खबर शो खलीफा दे दानो दंदान मुरब्बा दांत पांडे वाला की डाला।

0: This is your music.
1: देखा आपने, आज अली खान साहब, अली भाई, क्यों मैंने मैसेज किया है वो पश्तो में है। अच्छा, मैं बिल्कुल यार पश्तो सॉन्ग कॉपी पेस्ट कर लो अली भाई। अरे कॉपी पेस्ट नहीं होता यहाँ भाई, यहाँ कुछ और होता है। सादिया इरम इज ऑल्सो वॉचिंग अस, दानियाल फारूक सेज The king, I am the king, oh yeah. I'm so glad, I'm बहुत खुशी होती आप लोगों के साथ मस्ती करने में। लिंक सेंड कर दो, किसका? अपना। ये है फेसबुक का लिंक, आपके पास होगा ना?
0: लाहौर, कराची, इस्लामाबाद।
1: बात जनाब इतना नहीं है कि पता नहीं फेसबुक मेरे साथ क्या करने वाला है इस गाने के बाद। मैं तो कह रहा हूँ कि यार फेसबुक वालों को यार खुदा के लिए इसको मुझे बैन न करे भाई, ये बैन नहीं करे, ये मेरे नाक के बाल नहीं है, ये पता नहीं क्या है।

0: your location for maximum music.
1: Well, it's a long story. Acting career, मैंने नहीं छोड़ा बल्कि acting की field ही खत्म हो गई. When I entered the cinema, I had 10 films going on. I was acting in them. मगर film industry was going down. It was sinking. बस हो सकता है कि अल्लाह मैंने मुझे बचाना हो, क्योंकि कई दफा शूटिंग में जान जाते जाते रह गई थी. खैर, आरजे वली खान साहब, बेबी शर्मन प्ले कर दो. अरे बेबी शर्मन नहीं, बीबी शीरिन है भाई, ठीक है ना, बीबी शीरिन. दानियल साहब, आप कहते हैं ना कि वाई आई लेफ्ट एक्टिंग करियर, भाई करियर रहा है नहीं, मतलब ये कि सिनेमा खत्म हो गया, सिनेमा दे टर्न टू शॉपिंग मॉल्स, और मेरी कुछ फिल्में तो रिलीज भी हो गई. एक तो प्लेटिनम जुबली भी करता है अभी, चोरों का बादशाह. मैंने किसी फिल्म में हीरो से कम रोल नहीं किया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. अच्छा खैर, आगे चलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है और नदीम अख्तर साहब एकदम से तशरीफ लाएंगे, तो कुछ गाने भी रह गए हैं. मैं आपके सामने वो पेश करता हूं.

एक सॉन्ग बहुत अच्छा है माइकल जैक्सन का. आई लव माइकल जैक्सन. सुन रहे हैं? ये तो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि फेसबुक डजंट लाइक इट. यार ये क्या है? आयशा यूरिश है जुबान जुबान करी चलते. वेरी गुड, सही करी आप. डैनियल फारूक कहते हैं थैंक्स फॉर योर रिप्लाई. ऑफ कोर्स, थैंक यू. नंबर आपका बैंक. वुड यू प्ले एन इंग्लिश सॉन्ग? ये इंग्लिश ही चल रहा है भाई साहब. मुनव्वर साहब, मुनव्वर आफ्ताब साहब. चक्कर ये कि ये इंग्लिश सॉन्ग हम जो प्ले कर रहे हैं ना, फेसबुक को पता नहीं क्या प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है. वो पकड़ के हमें शूट डाउन कर देंगे, मतलब कॉपीराइट कर देंगे.

पता है कि ये माइकल जैक्सन के बारे में भी है कि मौत कैसे हुई। काफी लोगों का ख्याल है कि मौत हुआ तो कुछ नहीं हुई है, सब ये ड्रामा है, तो भी ड्रामा है, मगर क्या कह सकते हैं।

और ये वली खान साहब फिर कहते हैं लास्ट में स्पष्ट सॉन्ग प्ले कर दो माता पुष्पी ने खुल खंडल मकबा मड़बा की जमजाना मड़बा की अंडा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वेडनेसडे आज ये वली खान साहब आप जरूर ऑनलाइन होंगे और मैं आपको सुना कर आऊंगा बात ये है कि यहाँ पे फैंस रीड माय मैसेज आयशा जी आपका भी शुक्रिया मैसेज लिखने का क्या करें प्रोग्राम का टाइम खत्म होना चाहता है मगर इसे खत्म

0: कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने एक बेस गिटारिस्ट को कई महीने ढूंढा, उस बेस गिटारिस्ट को किसी पब में बेस गिटार बजाते सुना था, वहीं से उनको ऐसा लगा इस बेस गिटारिस्ट के बगैर मेरा बिली जीन्स सॉन्ग नहीं हो सकता, और वाकई सच था ये। और बिली जीन्स का अब आप अगर नोट करें तो उसमें बेस गिटार का रिफ्ट बिल्कुल अलग से ही नजर आता है। इसी के साथ ही मैं ये लास्ट में अपना सॉन्ग लगा रहा हूँ, ये गजल है बेसिकली जो मैंने डॉक्टर जुबैर फारूक की गजलें गाई हैं, उसमें से एक गजल है, उस वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
1: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান। মেরা নাম নজীব আখতার আর প্যার সে আপ লোগ মুঝে কেতে হো এনে সুনো। স্লিপলেস নাইট মে মে হু আপকে সাথ, আপকা আর মেরা সাথ হে জনাব। 3 বজে তক আর 3 বজে তক করেঙ্গে খুব আল্লাহ তে গুল্লা। इसे रेडियो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी करेंगे तो भी मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब। सवाल जो है वो जनरल नॉलेज का भी हो सकता है, कोई रिडल भी हो सकता है, या कोई टॉपिक भी हो सकता है। हैं जी, दे हैं जी। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को करता हूं वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है जनाब गाना। तो आज का पहला गाना कुछ ऐसा है कि आजकल बामे अरूज पर जा रहा है इसका टाइटल, सोने का जिक्र है इसमें। तो लिहाजा पहला गाना एलो पढ़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सब को। सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई हुई है, इसका उर्दू तर्जमा है कि मेरे महबूब ने हाथ में सोने की चूड़ी पहनी हुई है। वाह वाह, आजकल तो कांच की चूड़ियां नहीं पहनती लड़कियां, सोने की चूड़ी तो वैसे शौक सबको है, ब्रेसलेट पहनेंगी। चूड़ियों का दौर ही कहां रहा है जनाब। खैर जी, आज का सवाल जो है वो कुछ उर्दू के हवाले से भी है और इसकी बड़ी तफसील भी है। वाहिद जमा के बारे में पता, शेख अब्दुल वाहिद भाई भी आ गए, लेकिन वाहिद एक को कहते हैं और जमा तो सभी को पता है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं भाई, मेरे बहुत सारे भाई हैं, भाई हैं, भाई भाइयों, ये जमा हो गई भाई की, भाइयों, बहन की बहने, और इसी तरह डिफरेंट रिश्तों का आता है। लेकिन आ जाए मां, मां की जमा होगी माए, माँ जैसी माए। तो आपने ये बताना है बाप की जमा क्या होती है। माँ की जमा तो मैंने आपको बता दी, माए बाप की जमा क्या होती है ये आपने बताना है। 3636 बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जान। अब सबसे पहले फेदा खा रहा है यूसुफ भाई ने बाबोज से, कह रहे हैं FM 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी को, चाची को, अरूसा को, गुलबानो को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई को, खिताब का लाला को, उफरान भाई को और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं आप? हैं जी, ते हैं जी, सब खैरियत है ना? मिर्जा साहब आगे गुज्जर खान, तो फ्रॉम गुज्जर खान। नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब तस्लीमात जनाब। वाह वाह जबरदस्त शो का आगाज, हिल्ला जवाब, सोने की चूड़ी जिंदाबाद, मजा आ गया जी, मजा आ गया, बेहतरीन माहौल बना दिया आपने शुरू से ही। मैं क्या बोलूं लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आपकी हुस्न समात है। और आज भाई आ गए हैं जल्दी जल्दी, जाने जी कर गया हबीबी, खुश रहे आपको, एस गोल को, एच गोल को, मुश्क को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कहा है उन्होंने। और जिगर, एस गुल, एच गुल, मुश्क को और तमाम सुनने वालों को एक मैशअप हो जाए तो क्या बात है,
1: बिल्कुल हो जाएगा जनाब। अब कैसे बातें करता है जनाब
0: भाई। हमारे प्यारे से लाला जो हैं आज आए हैं बहुत जल्दी, काफी दिनों से बहुत लेट हो जाते थे या कहीं इधर उधर हो जाते थे। तो अगर अब लाला जल्दी आए हैं
1: तो लाला का गाना भी जरा जल्दी होना चाहिए ना यारा।
0: तो अभी हम जिस ट्रैक की जानब जा रहे हैं, ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब एस गुल, एच गुल और मोश को अयूब आफरीदी की जानिब से। एलो फड़ो

0: वेलकम बैक कहेंगे साकी तेरी महफिल में। हैं जी जी हैं जी, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुला जारी हो। सर ये सवाल ये है कि माँ की जमा है माए, बाप की जमा क्या है, ये आपने मुझे बताना है। आई मीन चार्ली आ गए, कहाँ थे चार्ली तुम, इतने दिनों के बाद आए। कहते नहीं भाई शो ऑसम बिंदास, बोले तो जगास। स्वीट फैमिली को सलाम, संजीदा सिस्टर को सलाम, और
1: अहमद जानजेब का कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा।
0: कर देंगे जनाब, अहमद जानजेब का एक गाना मैंने वैसे ही निकाला हुआ है, तो अमीन चार्ली आपका नाम ले देंगे हम। और अहमद हुसैन माहिर, बिल्कुल यही नाम है, आई एम अहमद हुसैन माहिर, इसका कोई बाबा का कोई जमा नहीं होता, बाप एक ही होता है, बट मैं अल्लाह वेरी नाइस शो ब्रो, खुश रहे भाई, प्लीज प्ले रोकड़ी जुदाई सॉन्ग। ये रोकड़ी जुदाई सॉन्ग कौन सा आ गया है? अच्छा अहमद हुसैन साहेब, आप मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और आपके जो मैसेज है वो हम समझ गए, आपने कहा है कि बाप की कोई जमा नहीं होती, तो आपने इनकार कर दिया है, तो लेकिन ये सवाल फिर भी जारी और सारी है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और सलाम कैसे हैं वाली साहब, कैसे हैं? संजू के लिए दुआ और प्यार कह रही हैं जरीन नूर, हमारी शहजादी सी मैना, सदा खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। और अरे वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आ गए भाई, हमारी नौरीन बहना भी आ गई हैं, फैसला बात तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई नदीम, कैसे मिजाज हैं? बेशुमार दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए भी। नदीम भाई, मुझे मेरी प्यारी बहना संजू ने बताया था कि आप मुझे याद फरमा रहे थे, कल वैसे भी ट्रांसमिशन प्रॉब्लम चल रही थी, आजकल मेरी जाती जिंदगी में कुछ मसरूफियात और खानदानी मामलात चल रहे हैं, इसी वजह से जहनी तौर पर भी कुछ उलझन में हूँ, उम्मीद है आप मेरी मसरूफियत और खामोशी को समझेंगे और मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। वैसे आप हर दम हर वक्त मेरी दुआओं में शामिल हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। और कहती हैं कि मैंने सुबह आपका शो देखा कि आप लाइव आए थे। एक बात नदीम भाई आपसे पूछनी है कि जब लोग सलाम के बाद जाती सवाल करते हैं, क्या आपकी शादी हो चुकी है? खास तौर पर खवातीन इस तरह के सवाल करती हैं तो अजीब सा लगता है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आप क्या कहते हैं? मैं इस पर ये कहूंगा कि बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए आपको एक बात बताऊं, जो लोग पब्लिक फिगर यू कैन से होते हैं, देखिए मैं तो एक बहुत ही नाचीज सा इंसान हूं, रेडियो की समातें मुझे सुनती हैं, लेकिन पब्लिक फिगर हैं हम, यहां पर जो मौजूद हैं आप लोगों की वजह से मौजूद हैं, तो बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन रखने का शौक रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अब ये तो मैंने अपना बताया, बहुत ही छोटे फोरम पर हूं मैं, लेकिन जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हैं, लाइक टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया, तो उसमें भी देखें आपके एक्टर्स जो हैं, एंकर्स जो हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जरूर जानने की कोशिश करते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, बंदे की शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, क्या करता है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरी नजर में, तो ये मेरी जाती राय है, हो सकता है आप इससे इत्तफाक ना करें, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पहला सॉन्ग उनको लाजवाब जबरदस्त लगा, जब हम किसी शख्स को चांद बना लेते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो तारे ना दिखाए। बहुत खूब, हाय हाय, बाप की जमा अबवाब है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैंने बाब नहीं पूछा, मैंने पूछा है बाप पे वाला, यानी कि फादर, यानी कि अबूजी, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ, جیسے ماں ہے مدر, ماں کی جمع اردو میں مائیں ہو گئی, تو باپ یعنی کہ فادر کی جمع کیا ہے یہ بتانا ہے. اچھا بھائی, اس سے پہلے کہ میں دوسرے میسج کی جانب جاؤں, سب سے پہلے میں اپنی پیاری سی بہن نورین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کروں گا, اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانی تمام مشکلات کو ختم فرما دے, دور نہ فرمائے, ختم فرما دے, جڑ سے اکھاڑ دے. آمین سم آمین. تو آپ کی مصروفیت اپنی جگہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے میری پیاری سی بہن, خیر و عافیت کا پتہ چل گیا, دیٹس آل. اور اور اور اور اور جی دبئی تو ہی آگے نے لوگ فرحین آ گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں السلام علیکم, اور تمام سننے والوں کو تمام سماعتوں کو میرا سلام. اور بھائی بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے, ہائے کوفت ہوتی ہے مجھے جب کوئی میسج کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے نا بھائی, کیا لکھا ہوا تھا اس میں, سوچ میں پڑ جاتا ہے آدمی, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور اور اور علیم الدین یوسف زئی صاحب بھی آ گئے, کیا کہتے ہیں وہ, ہاں جی پیشگی انہوں نے شکریہ بھی ادا کر دیا بھائی, ہاں پیشگی شکریہ ہی ادا کیا کہ میرے میسجز کو شامل کیجئے گا, شکریہ کے ساتھ. اور کہتے ہیں واجب الاحترام محترم ندیم بھائی اختر بھائی صاحب السلام علیکم, سجاد علی مہنی حسن کی فرمائش. اور عمران ریاض صاحب, نسیم قریشی, ایوب آفریدی, خطاب گل لالا سمی شیخ, اور آپ کے انتہائی واجب الاحترام والد محترم جاوید اختر صاحب کی خدمت اقدس میں میرا عقیدت برائے احترام پیش کیجیے گا, ہر لمحہ دعا گو. نئی خواہشات کے ساتھ ہمارے پیارے سے علیم الدین یوسف زئی صاحب ایف بی ایریا کراچی سے. تو جائیں گے جناب, آج کل بہت گرمی ہے آپ سمجھ رہے ہیں, پورے کراچی میں گرمی چل رہی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے, تو جہاں پر بجلی زیادہ جائے ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے یہ گانا سنیں.

वेलकम बैक कहेंगे बिजली भरी है मेरे अंग अंग में ब्यूटीफुल ट्रैक बिजली ना आ रही हो तो ये गाना सुन लिया करें। मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर RRRR। अच्छा हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरी इन्होंने का मैसेज तो हो गया, सबको सलाम कहा है उन्होंने, वालिद साहब को भी कहा है, संजू को भी कहा है और तमाम सुनने वालों को भी। मैंने मैसेज पहले पढ़ा था या नहीं पढ़ा था याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन फिर पढ़ते हैं। सलाम कहा है मेरी प्यारी सी शहजादी बहना है और कह रही है कि वालिद साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम, और भाई मेरा बेस्ट यारों को भी प्रोग्राम में शामिल करो, मुबीन खान और गुल मोहम्मद। अरे भाई क्या बात है क्या बात है यार, ये जिशान रोहड़ी का जी जो गाना है जुदाई, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा उदासी वाला होगा है अहमद भाई, लग ऐसा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए चलाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ इमाम बख्श साहब आ गए हैं और कह रहे हैं इमाम बख्श सयाल साहब टंडो जाम से प्लीज सही सिंधी गाना एक हो जाए तो क्या है। बिल्कुल हो जाएगा भाई, डोंट वरी डोंट वरी। और दुबई से मैसेजेस आ रहे हैं भाई, तमाम सुनने वालों को तो सलाम कहा ही है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं भाई, शुक्रिया। और मिर्जा साहब कहते हैं नदीम भाई आपने

या आखिर में वेलकम बैक कहेंगे। गाना इस वजह से कट गया कि लक जड़ा है ना वो पतले तो मोटा हो गया। वेलकम बैक कहेंगे अगेन और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस की जानेब। मैंने कल भी एसएमएस किया था, आप तक नहीं पहुंचा, हमारी लाइट नहीं थी। जरीन नून मेरी प्यारी सी बहन कह रही है हाय सो स्वीट। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो, कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी बहना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और आज जिंदगी भी साथ है। हाय अल्लाह जी, जिंदगी तुम्हारा नाम मुझे बहुत पसंद है भाई। यार कितना खूबसूरत सा नाम है यार, किसने रखा था? अम्मी ने, अबू ने, या अबू की जमा ने? आज सवाल भी है। और करिए माशाल्लाह से अगर आपने आवाज में हो तो सिर्फ जिंदगी के नाम कोई साथ नहीं चाहिए बस। हमेशा जिंदगी, सीमा साइम और हमारी एस गुल बहना, ये सब बहने जो है दो, ये फरमाइश मेरी आवाज की करती हैं। चलिए जी कोशिश करेंगे जिंदगी। और अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई, वेलकम आपको। गुलबानो और अरूसा किधर है जरा बताएं तो सही। नदीम बंगश साहब, नदीम बंगश भाई, ये दोनों बहनें जो हैं हमारी गायब हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इन दोनों की तमाम मुश्किलात खत्म फरमाए और अपने अपने पिया के घर पहुंचाए। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इन दोनों मेरी प्यारी सी बहनें जो हैं गुलबानो और अरूसा पिया के घर ना चली गई हूं, और कोई मसरूफियत भी हो सकती है। हमारी तरफ से जो है हमेशा इनके लिए दुआएं हैं। नवेद भाई आ गए, कह रहे नदीम भाई आपका, अच्छा नदीम आपका छोटा भाई, ये बेतकल्लुफी क्यों? क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं कि आपका छोटा भाई, तो जो छोटा भाई है बड़े भाई को भाई कहते हैं। नदीम भाई, सिर्फ नदीम क्यों लिखा भाई? या तो फिर बड़े भाई बन जाओ या नदीम भाई लिखो। अच्छा जी आपका छोटा भाई सुन रहा है, शकील भी सुन रहा है आज, तो भाई क्या बात है, जीते रहो मुस्कुराते रहो। और जनाब एसगुल आ गई हैं, सलाम की बात कह रही हैं, कैसे हैं आप भाई? आपको, लाला को, संजीदा आपी को, मोश को, मानूर को, सनम को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूल्हा भी आ गया जनाब, दूल्हा नमन गौर दूल्हा, यानी के समझ रहे हैं ना आप, हमारे सभी भाई आए, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप? सब सुनने वालों को सलाम। आपकी बीच वाली पिक्चर माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी, मैंने आज तक पिक्चर बीच में खिंचवाई नहीं, हमेशा साइड पर होके खिंचवाई, आधा मुंह आता है मेरा हमेशा। अच्छा पिक्चर उनको अच्छी लगी भाई, फेसबुक पर एक पिक्चर पोस्ट की थी, उस हवाले से फरहीन ने भी कहा है और इन्होंने भी तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आज ही कर दिया था भाई, वो असल में फेसबुक वालों की जानिब से मुझे ये नोटिफिकेशन आया था कि भाई आपकी पिक्चर बहुत देखी जा रही है, भाई कोई पिक्चर विक्चर और डाल दो। तो बस हमें सोचा है कि अब ये काम करते रहेंगे, यानी कि समझ रहे ना आप, हम तो अच्छा जी अच्छा भाई एक गाने की फरमाइश कर दी है अपनी उनके लिए। आप घूमने गए थे? नहीं भाई मैं तो टहल रहा था, वहां पर घूम नहीं रहा था। सभी की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। तैयारी कैसी चल रही है जरा बताओ, ब्लड प्रेशर की पोजीशन क्या है, शादी जैसे जैसे करीब आ रही है ये भी बताया करो। जिंदगी कह रही है मुझे अचानक जाना है, सॉन्ग फिर कभी सुना दीजिएगा। अरे नहीं जिंदगी, हम आपको सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। वैसे कहाँ जाना है, जिंदगी अगर चली गई तो फिर इंसान जिंदा कैसे रहेगा, यानी कि समझ रही है ना। नदीम भाई अभी शो सुनना शुरू किया है मैंने, लाला के लिए अच्छा सा पख्तों का एक सॉन्ग अगर अपनी है अपनी आवाज में लगा दे तो
دو ہو گئی فرمائش. میں نے کہا تھا نا ایس گل بھی فرمائش کرتی ہے مگر زندگی آپ پشتو گانا سن لیں گی اپنی آواز میں ایک ہی دفعہ میں. لیکن چلے پشتو گانا جو ہے نا میں چند لائنیں سنا رہا ہوں, اس کی فرمائش فوراً پوری کر دیتا ہوں لالا کے لیے.

अच्छा भाई समी साहब, आपकी फरमाइश हम चलाना चाह रहे थे मगर वो फिलहाल चल नहीं पा रही, थोड़ी देर में चलाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा म्यूजिक सुना रहे हैं आपको पहले।

तो सभी साहब आपका वो गाना जो है वो तलाश किया जा रहा है, जैसे वो मिल जाएगा तो हम चलाएंगे, लेकिन फिलहाल आपकी उनको हम ये वाला गाना डेडिकेट कर रहे हैं जो अभी चलेगा। हमें पता है कि ये भी आपको बहुत पसंद है, एल्लो फड़ो। वैसे इसकी शायरी आप पर फिट बैठती है, आपको पसंद भी है, मुझे भी पसंद है। एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक, ना जाने क्यों ना जाने क्यों ना जाने क्यों अरमा लारा लारा रा रा रा रा रा भाई आई वो सिक आई कैन नॉट मूव एट द टाइम। साहिबजादा भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यकीन मानिए, दिल की गहराइयों से आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। और आपका वो वाला मैसेज जो है ना, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। ठीक है ना जी, वो एक शादी में एक आदमी, पेटू आदमी, जो मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला आदमी, जाता है खाना स्टार्ट होता है। अब वो जनाब शुरू, एक बड़े मियां ने टोका, दरमियान में पानी भी। अच्छा अच्छा, लतीफा कुछ यूं है कि एक भरपूर तरीके से पेटू किस्म का इंसान, जो कि सिर्फ खाते ही इसी वजह से, खाने के लिए जीते हुए, वो एक शादी में चले गए। खाना खुला, सबने खाना खाना शुरू किया, वो भी शुरू हो गए, प्लेट फुल टाइम भर ली, अब खाए जा रहे हैं। बराबर में एक साथ देख रहे थे, वो देख रहे भाई ये रुक ही नहीं रहा है, खाए जा रहा है। आखिरकार बोल पड़े, भाई खाने के दरमियान में पानी भी पीते हैं। तो वहां भी बोलने लगा, भाई दरमियान आएगा तो पानी पीऊंगा ना यानी के समझ रहे ना आप, ये थी सूरत हाल। और बाप की जमा है बापों, क्यों चाहिए बापों को चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें। नक्को बाबा नक्को साहिबजादा साहब, ऐसा नहीं है, यानी कि समझ रहे ना आप। अनीस साहब आ गए, अनीस अकबर, आपका शो सुन रहे हैं, काफी अच्छा चल रहा है ना नदीम भाई, कैसे हैं? और बहुत सी दुआएं आपके लिए और आपकी टीम को और तमाम सुनने वालों को भी। अनीस अकबर साहब, आप भी हमारे नए लिसनर हैं, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और जनाब नदीम भाई, अच्छा ये तो हो गया था मैसेज। अमीन कह रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, आपके सबकी दुआ है मेरी जानिब से सबको। वालेकुम अस्सलाम, सबा गुल को सलाम, पगली को और नौरीन सिस्टर को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह नौरीन आप ही की परेशानी खत्म करे, आमीन, दिल से दुआ है, ये कह रही है प्यारी सी जरीन नूर। और आखिरकार रूहान के मैसेजेस भी आ गए हैं, सलाम कहा है तमाम सुनने वालों को। वालेकुम अस्सलाम।

और भाई इन्होंने भी तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की हुस्न नजर है मेरी पोस्ट पर, सो नाइस ऑफ यू, बस लाइक मारते रहे, स्टार देते रहे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चले भाई इसी बात पर मिर्जा शुजा साहब की जानिब से, जरीन नूर की जानिब से, अदीला की जानिब से और हमारी जानिब से आपके लिए ट्रैक है संजू, एलो फड़ो।

0: ¿Qué? Da yo cana yar. बाबूजी क्या गाना थी और शुरू शुरू में उनकी आवाज भी आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और आपके मैसेजेस आ चुके हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों की फरमाइशें सबकी पूरी होंगी जिनमें हमारे प्यारे से अहमद हुसैन साहब, उनके दोस्त मुबीन खान, गुल मोहम्मद, आप लोग सब इंतजार कीजिए, गाना जरूर चलेगा। और अनीस अकबर साहब हमारे नए लिसनर आए हैं, उनको भी हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमारे अलीमुद्दीन साहब, हमारे अमीन चार्ली साहब, आप सब लोगों के गाने जरूर चलेंगे। अभी जरा टेम्पो जो बना हुआ ना उसको बना रहने दो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और अल्लाह नौरी नबी की परेशानी दूर करे। हाँ, ये मैसेज हो गया था जहीन नूर का। जावेद साहब पापू से कह रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देर से सही, लो मान गया, मुझे वक्त का नहीं मालूम था। जावेद भाई, ये किस पड़ोसी का मैसेज मेरी तरफ आ गया है?
1: पानी पीने के लिए
0: उठा
1: था, आपको मैसेज।
0: जाहिद भाई बापू, उससे कैसे हैं आप साहब? देर से सही, लो मैं आ गया। अच्छा, लो मैं आ गया, मैं समझा मान गए, मुझे वक्त का नहीं मालूम था। तो जाहिद भाई, आपको हम बता देते हैं, हमारे नए लिसनर है, याद आ गया मुझे। तो जावेद भाई, आज के दिन यानी कि बुध, जुमेरात और जुमे को शो होता है रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि समझ रहे हैं ना? हाँ, समझते रहे। आगे बढ़ते हैं आपके और मैसेजेस की जानिब। और समी भाई कह रहे हैं, गुफरान भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अब सही नहीं कही, इस तरह है अब बोले, वालेकुम अस्सलाम कह दिया, थैंक यू भी कह दिया उन्होंने। अब पूछे क्यों, पूछे ना उनसे, नहीं सॉन्ग तो चलाया नहीं उनको, उनको वैसे उनके लिए डेडिकेट कर दिया था मैंने, शायद इसलिए। गुफरान भाई मेरा सॉन्ग निकालें भाई,
2: पीसल पीसल भाई नहीं, पीसल अली खान उनका गाना है।
0: कह रहे भाई आपकी अंतड़ियां निकल सकती है, गाना नहीं निकल सकता। वैसे ये छोड़ रहे हैं, अभी शादी होने वाली है, आने वाली खुद ही निकाल देगी। कह रहे वरना शादी का कार्ड कैंसिल। तुम क्या समझ रहे हो समी भाई, कि हम कार्ड के ऊपर बैठे हुए हैं, हम बगैर कार्ड के आ जाएंगे, टिकट लगाया हुआ है,
1: क्रेडिट कार्ड कैंसिल।
0: बिरयानी खीर, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, होना है,
1: ब्लॉगर बनकर आ जाएंगे
0: हम, बेफिक्र रहे आप। सलाद रायता भी है भाई, मेन्यू इसका मतलब डिसाइड कर लिया उन्होंने, बिरयानी है, खीर है, सलाद है और रायता है, कोल्ड ड्रिंक भी होगी, आइसक्रीम वैसे सलीम मेमन की जानी से होनी चाहिए। इसलिए कई दफा यार एक डिश कम से कम सालन रोटी तो रखो, सालन रोटी भी होनी चाहिए ना।
1: सलीम मेमन भाई तो अभी से हाथ में प्लेट और खाटा चमचा लेके बैठे होंगे।
0: खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अभी इनके साथ तफरी शुरू हो गई है। और बिल्कुल जनाब, ये क्या हुआ? अच्छा जी, उर्दू में बाप की जमा भी बाप है, या के बाप, ये कह रही हैं फरहीन दुबई से। अच्छा दुबई में क्या मतलब, अरबी में क्या कहते हैं अब्बा को, अब्बू को? कुछ तो कह रही होंगे, हबीबी नहीं कहते, हबीबी नहीं कहते। अच्छा भाई, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहा है जरीन बहना, जीती रहे, खुश रहे। नौरीन बहना कह रही हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा जी, कहां गया, यहां से शुरू, मतलब आपकी आवाज बहुत अच्छी सिंगर वाली है, लेकिन पश्तो में थोड़ी और ज्यादा लग रही थी, ना जाने क्यों। द ग्रेट लेजेंड मोहतरम जनाब जावेद अख्तर साहब, अल्लाह पाक का आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन जुमा आमीन। इस सॉन्ग को अमर कर दिया है, जैसे हर सिंगर का फखर, जिसे हर सिंगर गाकर फखर महसूस करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मिर्जा साहब, मिर्जा शुजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज और पढ़ेंगे हम शमी भाई का, और उसके बाद आपको गाने की जानिब लेके जाएंगे। कह रहे हैं नदीम भाई, आपने 500 वाला फ्री पेट्रोल लिया। भाई वो पेट्रोल डलवाते हैं टंकी में, और ये 500 रुपए वाला पेट्रोल जो है इसके लिए वक्त चाहिए। पता नहीं क्या है यार वो, अब सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह। मैं वैसे इसके हक में नहीं,
1: पहले हो जाती है आवाज आके आपने पर्ची भी,
0: पर्ची वर्ची बनवाना, उसमें लाइन लगी हुई है। भाई इतना टाइम किसके पास है भाई जा, आप जरा सोचो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप,
1: इस करेंगे,
0: हाँ करेंगे करेंगे। तो अभी फिलहाल एक ट्रैक की जानिब लेके जा रहे हैं। ये ट्रैक कहाँ गया? ये ट्रैक जनाब हमारे गुफरान भाई का है, और ये ट्रैक डेडिकेट हम कर रहे हैं अकबर अनीस अकबर साहब को, हमारे नए लिसनर हैं, और जावेद साहब भी आए हैं अभी, उनको भी, हमारे नवीद भैया

अच्छा, हमारे नवीद भैया जो छोटे भाई और उनके साथ शकील भाई भी हैं, उनको ठीक है जनाब, इन सबको और हमारे अहमद हुसैन साहब को तो ट्रैक दूसरा हमने डेडिकेट करना है, और समी को भी ये ट्रैक भाई हमारे गुफरान भाई डेडिकेट कर रहे हैं। ये गुफरान भाई का गाना है ओरिजिनली, ठीक है जी। तो ये आप सब नए लिसनर्स को भी डेडिकेट कर रहे हैं, एल्डो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हूं आप सबको जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि इच्छा लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। अच्छा भाई हमारी एक और बहुत ही पुरानी लिसनर प्यारी सी लिसनर समरीन बलोच भी आ गई है नीली आंखों वाली कह रही है नदीम आपको और तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई कह रहे हैं भाई गुफरान भाई लेटेस्ट सॉन्ग लेकर आते हैं वो तो है और बाकी आपके तमाम मैसेजेस का जवाब हम नहीं दे सकते ना मैं ना गुफरान भाई समीर भाई यानी कि समझ रहे हैं ना आप। पायलट ने शिप को महारत से बर्थ पर लगा दिया ये जुमला सही है या गलत? अच्छा इसमें कुछ गलती भी है कुछ नहीं भी है बल्कि गलती है बेतहाशा क्योंकि बर्थ पे जो शिप लगता है वो होता है सी शिप यानी कि बहरी जहाज और बहरी जहाज का कैप्टन होता है पायलट नहीं होता तो लिहाजा मेरी नजर में ये जुमला गलत है। अब आगे हो सकता है मैं गलत हूं। हमारे साहबजादा साहब ने भेजा है कि पायलट ने शिप को महारत से बर्थ पर लगा दिया ये जुमला सही है या गलत? मैंने कहा गलत है। सही कहा ना मैंने? चले जी। और नवेद अली भाई कह रहे हैं नदीम भाई जवाब है अबाओ अजदाद। क्या बात है जबरदस्त भाई बात खूब। और मिर्जा साहब की कहने बहने भाई वाह भाई बहुत खूब जबरदस्त वाह गुफरान भाई आपने तो कमाल कर देता है जबरदस्त लव यू क्या सॉन्ग चलाया आपने। गुफरान भाई इसी तरह के काम करते हैं। अच्छा भाई अब जो है आप लोगों की फरमाइशें बेतहाशा मेरे पास जमा है और अभी सबसे पहले हम जिस फरमाइश की जानिब जाएंगे वो फरमाइश है जनाब हमारे नए प्यारे से लिसनर हैं और उनका नाम है अहमद हुसैन साहब उनके साथ मुबीन खान भी सुन रहे हैं और उनके साथ गुल मोहम्मद भी सुन रहे हैं तो उन्होंने एक गाने की फरमाइश की थी तो आपका गाना एलो फड़ो

क्या बात है जरा यार, इतना दुखी गाना मत करो मेरे भाई। अहमद हुसैन साहब की काम पै गया थानू, कौन छड़ के चला गया है आपको, जरा बताओ तो सही। वैसे वाकई गाना बहुत अच्छा है, मगर यानी कि समझ रहे ना आप, थोड़ा सा ट्रैक से हटके था, लेकिन खैर मैंने सोचा है कि ये इसीलिए मैंने गाने जो है वो 2:15 बजे के बाद ही चलाना शुरू किए हैं। अच्छा जनाब, अनीस साहब कह रहे हैं कि नदीम भाई आई एम नॉट न्यू इन योर शो। अनीस भाई पूरा नाम पढ़कर मैं समझा कि शायद अनीस अकबर लिख दिया था, मैं समझा कि अनीस के नाम से तो मैं आपको जान गया हूं, पहचान गया हूं। और कह रहे हैं कि सही सिंधी सॉन्ग चला दो, सही सिंधी गाना हमने चलाया था एक, नहीं चलाया था तो अभी चलाएंगे आपके लिए अनीस भाई, डोंट वरी। और जावेद साहब ने भी एक फरमाइश कर दी है, अब यह फरमाइशें ही आना शुरू हो गई, अब वक्त भी नहीं रहा तो अभी फौरन से पेशतर हम चल रहे हैं जनाब एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक की जानिब। और इसकी फरमाइश जो है हमें किसने की थी, ये देखना पड़ेगा भाई यार, मेरे पास लिखा क्यों नहीं हुआ यार। और मुझे अच्छी तरह याद है इसकी फरमाइश आई थी, वो मैसेज को मैं ढूंढ रहा हूं, नाम लेना जरूरी होता है, मैं ज़हन मशीन कर लेता हूं मैसेज, तो ये ज़हन मशीन क्यों नहीं हो रहा। हाँ, हमारे इमाम बख्श सियाल साहब, उन्होंने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, सिंधी ट्रैक की, और उसके साथ साथ हम ये ट्रैक जो है अनीस भाई आपको भी डेडिकेट करेंगे, और हमारे जितने भी सिंधी बहन भाई सुन रहे हैं उन सब के लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो अल्ले मुंजा माणू वाला मुंजा जोगीड़ा अल्ले। अच्छा फौजिया सोमरो की सही फरमाइश थी तो उन्हीं की आवाज में लगाया, वरना ये अली जफर भाई ने भी गाया हुआ है, बहुत अच्छा गाया हुआ है। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और जावेद भाई का मैसेज मैंने पढ़ लिया था, उन्होंने एक फरमाइश भी की है और क्या कहा है। तमाम मेरी तरफ से सब सुनने वालों को और रेहान असदी के लिए, अरे क्या बात है भाई, ये डेडिकेशन है बेसिकली। तो रेहान असदी साहब को हम जरूर डेडिकेट कर देंगे जनाब। जब कोई शिप पोर्ट से दूर आकर लगता है तो पोर्ट की तरफ से पायलट बोट भेजी जाती है, जिसमें पायलट होता है, जिसका नाम होता है शिप को बर्थ पर लंगर लगाना है, उसको पायलट बोलते हैं। साहिबजादा साहब आप बेहतर जानते होंगे, मगर आप का जो सवाल था उस सवाल के हवाले से मैंने, जो मेरी नाकिस अकल है उसने जो जवाब दिया कि पायलट ने शिप को महारत से बर्थ पर लगा दिया। तो ये आप बेहतर समझते हैं और आपने जवाब भी दिया। मेरी नजर में ये जुमला इस वजह से क्योंकि शिप जो होते हैं, सी शिप्स जो होते हैं, वो उसके जो सरबराह होते हैं, जो उसको कंट्रोल करके चला रहे होते हैं, उनको कैप्टन ही कहते हैं, तो मेरे जहन में यही आया। पायलट जो होते हैं वो एयरप्लेन चला रहे होते हैं, तो मेरे जहन में वो आ रहा था, लेकिन आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम सुने हो वजी बाबा, आज फिर नींद आ गया था, अभी उठ गया हूँ, सोचा सलाम दुआ कर लूं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मेमन साहब, आ गए जनाब, देर आए दुरुस्त आए। और कहते हैं खान साहब से, अच्छा ये चुटकुला है, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि गाने आप लोगों के चलाने। तो हमारी प्यारी सी नौरीन बहना ने एक फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश कहां गई है, ओए उनकी फरमाइश है, लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दे जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये अल्लाह बिल्ला जा रही है। सारी ये आपके बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे हैं 3636 में। सवाल मैंने पूछा है कि माँ की जमा है माए, बाप की क्या जमा है? पता है भाई बाप की क्या जमा है? कोई जबरदस्त किस्म का जवाब नहीं आया, बताएंगे जरूर बताएंगे आपको। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है लिहाजा फौरन से पेश तर जाएंगे एक और ट्रैक की जानेब। हमें कुछ और याद आ गया भाई इसी बात पर, जिस ट्रैक की जानेब जाना था उसके हवाले से कुछ याद आया है तो उधर भी जाना चाहिए हमें, लेकिन चले इस ट्रैक के बाद चले जाएंगे उधर। तो ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं अमीन चार्ली की जानिब से संजू को। उन्होंने कहा था कि जी एक अच्छा सा गाना है अहमद जानजेब का, अगर हो जाए तो एल्लो पढ़ो, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग।

वेलकम बैक गएंगे सुना चांदनी रात में। ब्यूटीफुल ट्रैक यार, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। और हमारी प्यारी सी शहजादी बहना कह रही है कि समझ नहीं आ रहा, बाप की जमा बापों तो नहीं है। और सना आ गई है, सना अभी अभी उठी होगी। बाप एक होता है, इसकी जमा माही है, ये वालिद है नहीं है, मेरा ख्याल है जमा नहीं है, ये वाहिद है। बाप एक होता है और उसकी जमा नहीं होती है, ये वाहिद है। सनम कह रही है फ्रॉम मुल्तान। अरे सनम क्या बात है भाई, हमें बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज, पार्टिसिपेशन। तो अब इसका जवाब भी देते हैं और फिर क्योंकि वक्त नहीं रहेगा। देखिए, मैंने पूछा कि माँ की जमा होती है माए, और बाप की जमा क्या होती है, ये आपसे पूछा। माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा होता है दोनों का बराबर, है ना ऐसा। माँ की जो ममता होती है, जो प्यार होता है, जो शफकत होती है, वो हमें मिल जाती है मुख्तलिफ रिश्तों में, ये माँ की तरह प्यार करने वाला। और बहुत सारे ड्रामों में, फिल्मों में हमने ये डायलॉग्स भी देखे होंगे कि अगर कोई माँ है तो खाला जो है वो प्यार कर रही है माओं की तरह, इसी तरह जो है वो पुप्पो जो है वो प्यार कर रही है माँ की तरह। तो बच्चा बोलता है आप सब मेरी माओं की तरह हैं, मेरी माएं हैं आप। लेकिन जो बाप होता है वो वाहिद होता है। ये बिल्कुल सनम ने दुरुस्त जवाब दिया, बाप की जमा नहीं होती और उसकी भी एक कुदरत है, शफकत मोहब्बत प्यार सब कर लेते हैं, लेकिन बाप की जो कुर्बानियां हैं, जो किफालत अपने बच्चों की और बीवी की जो कर रहा होता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लिहाजा आपका जो बाप है, आपके जो वालिद हैं, आपके जो अब्बू हैं, उनकी कदर कीजिए, प्यार कीजिए। देखें हर चीज की जमा है, बाप की नहीं है। बाप वो अजीम हस्ती है। ये था आज के सवाल का जवाब, और दुरुस्त जवाब दिया द वन एंड ओनली सनम ने, दुरुस्त जवाब कि बाप एक होता है, इसकी जमा नहीं होती, ये वाहिद है, ये बेसिकली इसका जवाब है। तो जनाब इसके साथ ही हम जाएंगे एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है कहां गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी, हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की फरमाइश पूरी कर रहे हैं, सज्जाद अली की आवाज शामिल कर रहे हैं, और उनकी जानिब से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से आप सबको डेडिकेट करेंगे, और हम अपनी जानिब से डेडिकेट करेंगे इरफान मेमन को, हमारी मेमन कजन बहनों को, सायरा मेमन को, और सज्जाद अली को। सुनने वाले, चाहने वाले तमाम लिसनर्स को एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे तुमसे मिलते जुलते चेहरे, क्या बात है। अच्छा भाई एक फरमाइश और, हमारी जिंदगी तो चली गई लेकिन जिंदगी ने एक फरमाइश की थी, अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए। तो बच्चन लाइनें आपको सुना रहा हूं जिंदगी की जानिब से आप सबके लिए। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में,

आज बगैर म्यूजिक के सुनाया भाई हमने अपनी आवाज को, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। तो सुनो, वक्त फुर्र करके उड़ गया, सवाल का हमने जवाब भी दिया। अलीमुद्दीन साहब का मैसेज आया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। सर आप शुक्रिया अदा ना किया करें, ये मोहब्बत है आपकी और हमारी भी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो जनाब अब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी कल। नदीम भाई शिपिंग कंपनी में जॉब, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारा एक और मैसेज आया हमारे साहेबजादा साहब का, कह रहे हैं नदीम भाई शिपिंग कंपनी में जॉब कर चुका हूं, शिप के कैप्टन का काम आउटर एनकरेज तक होता है, पता नहीं। साहेबजादा साहब कह रहे हैं, साहेबजादा साहब मैंने आपकी बात 100% मानी थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने हमारी नॉलेज में इजाफा भी किया है पायलट के हवाले से, स्पेशली जो मेरे जहन में आ रही है बात, और जो आपने तरीका कार बताया बात बर्थ पर लगाने वाला, कि पायलट जब जाता है और जाकर उसको बर्थ के लिए लगाने के लिए, तो ये तमाम चीजें जो है ना वो समझ में आने वाली है, बेहतरीन। और थैंक यू वेरी मच अगेन। तो इसके साथ ही जनाब अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, मगर जाने से पहले हमने रेहान असदी साहब को एक ट्रैक डेडिकेट करना है जावेद साहब की जानिब से। तो इस ट्रैक को हम डेडिकेट कर रहे हैं रेहान असदी को। जावेद साहब लास्ट ट्रैक जो चल रहा है वो आपकी फरमाइश पर चल रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, साथ होंगे आपके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।